कि हम सताए खड़े हुए हैं, सलाम ले लो। मेरी दुआ अल्लाह तबारक व तआला विल्स देन आई कैन प्रेजेंट दिस नाज़ शरीफ वंस अगेन, द रोज़ा मुबारक ऑफ नबी अलैहिस्सलाम।

करम से उनके मेरे सामने उनका हरम आया, करम से उनके मेरे सामने उनका हरम आया। हमारी जिंदगी का वक्ते वक्त मुख्तनम आया, करम से रब काबा के दुआया रद नहीं होती, करम से रब काबा के दुआया रद नहीं होती। नजर के सामने किस्मत से मेरी मुल्तजम आया, नजर के सामने किस्मत से मेरी मुल्तजम आया। अल्लाह।

या कुर्बान बेटे को खलीलुल्लाह ने व्हाट काइंड ऑफ इश्क एंड मोहब्बत अल्लाह ताला हुक्म पुट द नाइफ ऑन द थ्रोट ऑफ योर बिलवड सन. He never questioned, oh Allah, what will you gain if I have to take the life of my beloved son? Of course, Allah Ta'ala ransomed him.

हवा वो हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं? हाउ लॉन्ग एम आई गोइंग टू लिव अ लाइफ ऑफ सिंस ऑन द सर्फेस ऑफ दिस अर्थ? हाउ लॉन्ग एम आई गोइंग टू बी walking like a hypocrite and munafiq on the surface of this earth? How long am I going to remain disobedient to my beloved Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam on the surface of this earth? How long am I going to use the bounties of Allah tabaraka wa ta'ala for His disobedience? How long am I going to be heedless and negligent with regards to the hereafter? गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं? बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। या अल्लाह चेंज दिस रूट ऑफ माइन, आई हैव टेकन द रॉन्ग रोड, पुट मी ऑन टू द राइट रोड। हवा वो हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया।